0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Oh my।

0: उसके साथ ऐसे अनुभवी आत्माएं अनुभव सुना है तो प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये सेवा करना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई वापस लेते हैं क्या? कई बच्चे कहते हैं, पापा हम चाहते नहीं है लेकिन आ जाती। कारण क्या? जवाब बहुत अच्छा देती है, कहती है जानते भी है मानते भी है लेकिन क्या करे वापस आ जाते। सोचो आ भी जाती तो रख।

0: Ayúscalo. Sangalabgarteo. Leken. Ike sangalabgarna. Dusra hai. Tret sangalabgarna. To baar baar. सफलता की चाबी आज क्या करेंगे? संकल्प करेंगे या दृढ़ संकल्प करेंगे? अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो उसकी निशानी है दृढ़ता, सफलता की चाबी। तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, इसीलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्रह्म जीवन की मोट सदा केयरफुल और केयरफुल मोट बदलना नहीं चाहिए। रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? करना सेवा या परिवार से किनारा है। और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, मूड नहीं बदले करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले के कारण में आने वाले निवारण करने वाले ठेका क्या लिया है? कंट्रेस्टर होना कंट्रैक्ट लिया है क्या? प्रकृति के मूड भी चेंज करें, प्रकृति को भी चेंज करता है ना, तो प्रकृति परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? होती है, कभी कभी होती। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाके बैठते, ज्ञान सागर नहीं स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, करते हैं। या कहेंगे आज पता नहीं, अकेला अकेला लगता है, तो पाप कहा कंपाइंड रूम कहा गया, अलग कर दिया। कंपाइंड से अकेले हो गए, ये प्यार, ये इसको प्यार कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार का मूड, एक होता है मूड ऑफ, वो बड़ी बात, ठीक है। मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक, मूड ऑफ वाले बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखता है, बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेलने करो, क्यों? क्यों बाप दादा का बच्चों से सभी से प्यार? बाप दादा ये नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वो बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने, नहीं। सबको समान बनाता ही है। यही बाप दादा का प्यार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिटल

एक सेकंड, बीच बीच में निकाल, अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए सब

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: व्यक्ति ज्ञान में भी नहीं पड़ा।

0: अरे इतना अच्छा लगता है, यहाँ तक अच्छा लगता है। तो लेवता के पीछे क्यों पड़ते?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई दिन अंदर में समझे, हाथ उठाने में शर्म आवे, तो भी अगर कोई विघ्न है या कोई अड़चन है, तो अपने दादियों को या जिसमें भी आपका फेथ हो, बड़े दादी या दादियों में, और सुना देना, रखना नहीं अंदर, कोई ना कोई इलाज ले लेना, क्योंकि होना है तो अचानक होगा, उस समय पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। कुछ भी अचानक हो जाए, हलचल हो जाए, तो इतनी शक्ति है जो स्वयं को बचाए, वायुमंडल में ये प्रभाव डाले और के भी मददगार बने। ये
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक बार बाप दादा इशारा देते कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो, आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार है वो भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो कि वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार उस रूप में देखो, तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वो नहीं हो। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वो भी आ जाते हैं वर्तमान संस्कार, वो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती, तो आत्मा ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा थी। तो ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वो रुकावट खत्म हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं, गंभीरता अच्छी है, लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है, तो सीरियस किसको अच्छा नहीं लगता है। गंभीर बनो, लेकिन अंदर गंभीरता हो, बाहर चेहरा मुस्कुराता हो। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, और ऐसे ज्यादा गंभीर वाला चेहरा उसे डरती है, दूर भागती है, सहयोगी नहीं बनेंगे। ब्रह्मा बाप का मुस्कुरा

नहीं मुस्कुराओ, जोर से हंसना नहीं, मुस्कुराओ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चों की छोटी सी बात भी होगी ना तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाती, दिल खुश, चेहरा खुश,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे। मेरा बाबा कहेंगे तो शक्ति ऐसे ही, मेरा बाबा ने दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वो कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर, नेगेटिव संकल्प, चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाए, क्योंकि ये अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति सहज सफलता दिलाएंगे। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य सर्वशक्तिमान उसके आगे मुश्किल किया, लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो अचानक या अंधकार हो जाता है, अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी ये गलती करते हो, छोटी सी बात बड़ी कर देते और बड़ी बात तो मुश्किल होती है, छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Amar.

Forza.

ojitos.

ऐसे सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तीन मास का अभ्यास सदा काल का अनुभवी बना देगा। अगर अपन ने उमंग उत्साह से किया तो मजबूरी से किया तीन मास पास करने हैं, फिर तो सदा नहीं होगा। लेकिन उमंग उत्साह से किया तो सदा काल के अनादि अविनाशी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। समझा?
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

संबंध देके पदार्थ देके संस्कार दे शब्द सफेद और विशेष दे अपमान

teacher quiero fumar.

इसलिए समय आने पर फिर वो देवान के संस्कार इमर्ज हो जाते। तो अभी आवश्यकता है इस

क्यों नहीं करता? अंश है तो वंश होके निकल जाता। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने का, आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देवान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है। और वो खत्म होगा बेहद के वैराग वृत्ति से। सर्वस्व

0: que jesse sabes que fala chalak ab logon ko dikhai deti aur bahut seva ka aise
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अबे बाप दादा, यही हर बच्चे से चाहता है।

जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। और ये बेफिक्र बादशाह

chaotic.

ही पसंद कर देंगे। आप सिर्फ एक मात्रा का अंतर कर मंसूर।

0: Hey, Danny. You see me? Up in a man. Busy right
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सो अपने निश्चय नहीं।

स्वराज।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ऐसे तो आप जानते हैं क्या रिजल्ट होती है, लेकिन उठाने से आपको ये याद उठाना भी मदद करेगा। इतने संग

0: भी ये सोचो कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। अच्छा, अभी जुबान से भी किया किया तो सही ना। तो ऐसे प्रॉमिस करके फिर भी नहीं करने का तो लाइन में आ जाएंगे ना। तो जब भी कोई ऐसे हो उस समय सभा के बीच में हाथ उठाया था याद करो, अपने आप को ही फायदा है। अब आप तो खुश हो, मदद मिलेगी ऐसे ही याद करने से। इतने सारे भाई बहनों के बीच में आपने अपने दिल से प्रॉमिस किया तो वो मदद मिलेगी, क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ हाजिर है अभी हिम्मत तो रखते है ना, चाहते तो है ना बनना, नहीं तो हाथ क्यों उठाओ, नहीं उठाओ कौन देखते। लेकिन सोचते बाप के आगे क्या, इतने ब्राह्मणों के आगे संकल्प किया उसको हल्का नहीं कर। चाहते हो तभी तो हाथ उठाते हैं, तो जो चाहना इसीलिए हाथ उठाया तो उसको आगे बढ़ाते रहो। बात को न देख करके बढ़ने की बात को सोचो, हो जाएंगे और कौन बनेंगे, आप ही तो बनने वाले हो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है, संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वही संस्कार है। उस समय सोचो जैसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। बाप के संस्कार

for phone now.

मान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं।

मिक्स हो जाते हैं ना अच्छे कुछ अच्छे पाप के कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार। इसीलिए दोनों मिक्स रहते हैं ना।

0: और संस्कार बनते कैसे हैं वो तो सभी जानते हैं ना। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती, और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पंचात्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उन्हों को आवश्यकता है तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो किसी की भी पालना लौकिक में भी से होती है, वही उन्हों के शरीर के खाने पीने पराई जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे
2: See?

0: Shadete.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्राह्मणों का काम के शोक लगाना भी के मेहनत है के योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचती है, पाप की महिमा की ऑटोमेटिक मीठे मीठे दिल गीत गाती। ब्राह्मणों का काम ही है, गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है, नाचना गाना मुश्किल है क्या? है मुश्किल नहीं ना? मुश्किल किसको लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो, गाओ, सहजे ना सहजे कान तो हिलाओ, सहजे मुश्किल तो नहीं है ना? जान बूझ के सहज से हट कर मुश्किल में चले जाते हो। है मुश्किल नहीं? बहुत सहज, क्योंकि बाप जानते हैं आधा कलम मुश्किल की जीवन व्यतीत की है। इसलिए इस समय सहज कोई है मुश्किल वाला? आप पीछे वाले मुश्किल लगता है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूल कर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना? ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो, तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना, झगड़ना। वो तो मुश्किल ही होगा ना? युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है, आपके पास विल पावर। परमात्मा ने विल की है पावर्स की विल पावर, तो परमात्म विल पावर के आगे पावर्स परिवर्तित होना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साधारण बोल, अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है, दोनों काम अपने

0: Hashtag agar poti bhiye koi hunar bhiye koi visheshta bhiye bhavta ta visheshta ko oti ko afrin dete lekin main nahi lo ye मैपन को समाप्त करो, ये सूखा मैपन है। अलौकिक जीवन में ये मैपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे सदा रूप दाता करने की शक्ति है। संभालो, साखर में कितना कचरा डालते हैं। डालने वाले को वो कचरे के बदले कचरा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Just so much.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Salt niggly, lichen, was फाउंडेशन पवित्रता, स्वच्छ हो, साफ हो, और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्र,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: चाहे अपने भ्रमण परिवार को संपन्न बनाने के लिए अभी इसलिए आने वाले वर्ष में क्या करेंगे, विशेष क्या करेंगे, टेंशन में रखते जो भी कमी है उसमें सहयोग दो, मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा के पास बच्चों के पत्र वाचित किया, बहुत अच्छी अच्छी हिम्मत किया क्या हम अब से 108 के माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रोल ध्यान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं बाप ने आप सबके नए

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इस

Check.
सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा विशेष संतुष्ट

सब एक संतुष्टता की शक्ति में सब शक्तियां आ जाएंगी।

Portaan.

にそっとしたコッカビネイジョーナ。カインバチキ

Getting healthy.

agarro.

पता नहीं बनेगी।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई व्यर्थ वा विकारी सोपन लगाओ का सोपन side।

0: toca veces su apatía. Yo que formane. Y alto farman. Y bajar farman. Y mantio. Tu farman que padre. Arman milte. Supongo un carje. Del mi hermano tena. Miri pavter tan su apan mil catamo. Y kitna armane. Jesse, I am. I am a kipati. Kartik, Kartis, who jow. Took so much out of the end. Or till just so much out of here. साथ में एक कमरे में जाती है तो लेन देन करती है, लेकिन काफी भी फिरत बातों का वर्णन करते करते सुना नहीं। सोने वाले कमरे में नहीं, बाहर दो सेकंड में अगर जरूरी बात है तो बाहर सुनाइए, तो को सोते सोते नहीं सुन। और बातें करते करते कहीं तो 12:30 भी बजा दे, मस्त होते हैं बातों में, उनको टाइम का पता नहीं। और फिर अमृत वेले उठते हैं, लेकिन आधा समय निद्रा लोक में और आधा समय योग। क्योंकि जो अलग पहले होके सोए तो हम पृथ्वीला भी तो अलग पहला होगा। ऐसे नहीं समझना, हमको तो कोई दिखता ही नहीं है, बाप दादा देखते हैं। इसीलिए मिक्स हो जाता है। अगर पूछेंगे ना कहेंगे नहीं, मैं बहुत शांति का अनुभव कर रही हूं। देखो नींद को भी आराम कहा जाता है। inte se frisk ut denna. Du kan till att jag är med barn.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, jahan hai anand hi anand.
2: जुदा ना थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे. धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे. याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल निकलना ही।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: एक सेकंड में

ऐसे शरीर शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया पुरानी दे पुराने दे के संस्कार से

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी उठ

head.

خوش مزاج چهره ایسے

一个呼吸里面。

अपने पास कमो।

しれない。歩くしかない。ヘパさん

sheep hunting. Sit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वर्तमान समय

Sir.

0: सोचना, नया करना, उसकी आवश्यकता ही नहीं। जो बाप ने किया वो फॉलो फादर सहजे ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुछ भी हो, बाप साथ है, मोचने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है, बाप का साथ का सहयोग लो, अकेले समझते हो ना तो मौज के बजाय मोच जाते हो, मोचना नहीं, ठीक है ना, अभी भी मोचेंगे नहीं मोचेंगे क्या, अभी नहीं मोच रहे है इस दिन, अभी मौज में हो, इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए, ठीक है ना, कि मौज चली जाएंगी, मौज नहीं जानी चाहिए, सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ, सिर्फ सेवा नहीं करो लेकिन सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको काम में लगा, सिर्फ सेवा कर रही है, सेवा कर रही है तो थक जाते हो, मोच भी जाते हो, लेकिन बाप के साथ का अनुभव जहाँ बाप है वहाँ मौज ही मौज, उस साथ को इमर्ज करो, सुनाया ना, याद करते हो लेकिन साथ को चूज नहीं करते, इसीलिए मौज जाते, संगम युग मौजों का युग है या मोचने का युग है, क्या है मौज का है, फिर मोचते क्यों, अभी अपने जीवन के डिक्शनरी से मोचना शब्द निकाल लो, निकाल लिया पक्का कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, एकदम मिटा दो, परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहे तो और कौन रहेगा, और कोई है क्या, नहीं तो सदा मौज ही मौज, सभी अपने ड्यूटी पर खुश हो, कि थोड़ा किटकिट है ड्यूटी में, नहीं कुछ भी हो ये पेपर पास करना है, बात नहीं है पेपर, पेपर पास करने में खुशी होती है ना, क्लास आगे बढ़ती है ना, तो बात हो गई, समस्या आ गई, ये नहीं सोचो पेपर आया पास हुआ मौज मना, जब बच्चे पेपर पास करके आते हैं कितने मौज में होते हैं, पूछते हैं क्या ये पेपर तो आएंगे, पेपर ही अनुभव में आगे बढ़ाते, इसलिए सदा मौज में रहते, सेवादारी नहीं लेकिन मौज में रहने सदा अपना टाइटल याद करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Чаплика, сука.

Sunscreen.

sorry.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं होती। उसका कारण वरदान सबको एक है कि दूसरा दूसरा एक ही है ना। 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक। खजाने सभी को एक जैसे, पालना सबको एक जैसे, दिनचर्या मर्यादाएं सबको एक जैसे। दूसरी दूसरी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं कि विदेश की मर्यादाएं और है इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है तो जब सब एक है फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है, क्यों? कारण बाप मदद कम देता है क्या है? किसको ज्यादा देता हो, किसको कम? ऐसे है नहीं है, फिर क्यों? Up.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो को स्वमान की दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है, मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो। एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है, बाबा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन खिटराक से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत है, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग आपके संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष पे नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, संग दोष पे नहीं हो।
2: पड़ता है कि
1: आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते, तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को, पाप के रंग में रंग लो। अच्छा आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिए तरस पड़ते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अपने माँ बाप का त्याग ड्रामा में विशेष ढूंढा हुआ है। आज से अपने माँ बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य ढूंढा हुआ सबसे नंबर वन त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग कर समय अनुसार समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो साधना में अटल रहे। ये ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बना के गई। ऐसे त्याग रामानुसार एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति का विशेष सेवा का पाठ बनाया जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रही है। सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है। तो इसरा बाप को जो अपना हिम्मत कम करने वाली हाथ काम है ना, वो बाबा से सुपुर्द कर दो, बाप को दे दो। बाप ये मैं नहीं कर सकती हूँ, आप ले लो, मैं ये संकल्प में भी नहीं लूँ, ऐसा करना पड़ेगा। बिल्कुल उसको संकल्प को आने नहीं दे, दे दो। वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर देना। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो सोचे वो करके दिखा।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय स्व के परिवर्तन में जय शिवा के सफलता। उसका जन्म सिद्ध अधिकार रश्मि।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो बाप तो देख खुश होता ही। बाप ने जो वायदा किया है कैसे भी लायक बना के ले जाना। बाबा माया आ गई, चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उठ जाओ तो माया देखती रहेगी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

स्वरूप हो गए

सीट पर सेट है तो श्रेष्ठ कर्म सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देंगे। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना योग युक्त राज सुते ही

0: அன்போக்கி அத்தாரட்டி பதம் குணா உச்சி.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देंगे

姐姐好变。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: song.

आने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं। आप चेक करो और चेक करके क्या करो, चेक करके फिर क्या करो, चेंज I'm

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: से देवता बीच में

0: अच्छा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में आओ नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। एक दो के साथ ही है ना, तो साथ देना अर्थात आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ते चलो, इस लक्ष्य में तीवर पुरुषार्थ ढीला पुरुषार्थ नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ये नहीं सोचो, ठीक होना ही है। यो बाप से प्यार है तो बाप को किसे प्यार है? तीवर पुरुषार्थ बच्चों।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yep. Swaddle.

0: इसलिए तीसरा रूप भी है, वो चतुराई का रूप है, क्रोध के चतुराई का रूप है। वो क्या है? कहने में, समझने में, ऐसे समझती है वह कहती है कि कहां कहां सीरियस होना ही पड़ता है, कहां कहां ला उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वो अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में ला उठाने की छूटी नहीं दी है। ला उठाने की छूटी है दी है, कोई मुरली में कहा है क्या ला भले उठाओ क्रोध नहीं करो? वाले अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्मा ही है उनको भी उठाना नहीं पड़ता है, लेकिन ला रिवाइज कराना पड़ता है। ला उठाते नहीं, कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो ला को बाप द्वारा बनाए हुए ला को रिवाइज करना पड़ता है। इतनी छुट्टी है निमित्त बनने वालों को, सबको नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सब ठीक, आराम से रहे हुए हो, मन भी आराम में, धन भी आराम में, दोनों ही आराम है ना? आप मुस्कुराओ, सीरियस नहीं रहो। अब तो सब मिल गया, बाकी क्या चाहिए? नाचो गाओ, मुस्कुराना अच्छा लगता है ना? ऐसे अच्छा नहीं, मुस्कुराना अच्छा लगता है ना? दिल में खुशी है ना, तो खुशी का चेहरे पर आता है मुस्कुरा। मुस्कुराते रहो, औरों को भी मुस्कुराना सिखाओ, ठीक है ना? अच्छा।
2: जुदा ना थे ना जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी आप और बाप कंबाइंड है, तो कंबाइंड है तो सिंगल हुए क्या? लोग के जीवन अलग चीज है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में कंबाइंड रूप में ऐसे कंबाइंड हो जो कोई भी अलग कर नहीं सकता। ऐसे कंबाइंड हो ना, कंबाइंड हो ना कि अकेले हो, कंबाइंड सदा बाप हर कार्य में सहयोगी है, साथी है। ये नशा रहता है ना, कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते, नहीं ना समझते हैं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: चा

सने अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर

0: oyentes. ¡Ach, qué loco!
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देखो घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होता। अगर रोज विधि
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: Papa. Sunny is shot the middle. To Sada Kilie. Men not the same. Mukto Jang. Vese be mukti valish manarayan. Men not the same. Mukto.
1: Yes.
0: ने समान सहज बना देगा, क्यों जिसके साथ शनि है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सभी बच्चे आपसे भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते हैं।
1: अमेरिका वाले गुड मॉर्निंग करते होंगे, यहाँ वाले गुड इवनिंग और गुड नाइट करते हैं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चाहे कोई भी विकार हो,

厉害。

डिस्कोटेक करके। कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये भी व्यर्थ संकल्प का विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान। और आजकल ये

सेवा पर जाओ तो चेक करना एक दिन में इन दोनों में से चाहे अपमान या दूसरे शब्द

0: अब समान बनना कोई मुश्किल।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा हर एक बच्चे को नंबर वन

Harpa chico.

Chubby. Chai de ye ye. Slurf. Gaga. Sag ka rang bhi lag jata. Alabele pan maga. Ho jayenge. Dono yan bahut ho kiye. Tu samajhti hai. Samay par. सोचा तो है क्या है उस पर अटेंशन दे देंगे लेकिन यहाँ अटेंशन का नोट तो होता है लेकिन बहुत काल यहाँ बहुत काल में बीच बीच में बहुत काल से रवासी चालू हो जाती है फॉर रिजल्ट

और फाइनल पेपर अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं होनी। तो कोई भी अपने

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के, चाहे पुराने चाहे नए, सभी को एकदम अशर समय निकाल

0: सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नहीं, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से ये बात कही है, लेकिन करना जरूरी, नहीं तो श्रीमद का हाथ पे हाथ दे करके नहीं चल सके। आपका फायदा है, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे, तो ये ड्रिल सभी को करना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुमारियां क्या बननी है? टीचर्स बननी है।

0: वहां सेवा करनी है, ऐसे ही रहना नहीं है। सेवा का अभ्यास करना है, तो थोड़ा हिसाब किताब पूरा करके अगर आवश्यक हिसाब है चल नहीं सकते हैं इसलिए सेवा करते हैं तो फेल है। सचमुच कोई कारण है, कईयों के सरकमटेंस है लेकिन कईयों की दिल भी है। शनिवार और इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो, सिर्फ रहने के संस्कार नहीं सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई हूं, प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करती रहेगी ना मजा आ जाएगा ना, तो आप पे भी कोई बहाना बना के अपने को चुरा सके। कुमारिया चतुर होती है, भोली वाली नहीं होती। इसीलिए कुमारिया अर्थात स्व उन्नति में हर समय कदम उठाती रहे, सिर्फ नौकरी नहीं स्वोन्नति में अपने सरकमटेंस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहे। ऐसे नहीं बस चल रही है नौकरी करनी है, कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे कुछ सोच नहीं। कुमारी वो ब्रह्मा कुमारी, वो अभी तो कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है ना, सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है ना, तो ब्रह्मा कुमारी वो जो विश्व कल्याण की भावना कामना रखे। तो देखेंगे बाप दादा और योग्य टीचर किटकिट वाले नहीं बनना, योग्य टीचर, क्योंकि योग्य टीचर्स की आवश्यकता है। आजकल क्या होता है, ट्रेनिंग भी कर लेते लेकिन सेंटर पर जाती है कोई प्रॉब्लम हो जाती, हैंड्स तो नहीं बन सकेंगे ना। कुमारी अर्थात बाप दादा के सेवा साथी और निर्विघ्न साथी, अपने को एडजस्ट करने वाले, एडजस्ट करने वाली हो ना कि अगेंस्ट होने वाली है। अगेंस्ट नहीं हो किसी के प्रति भी, एडजस्ट होने वाली। अच्छा तो ऐसी कुमारियां बनेंगी, हाथ उठाओ होने वाली, सोच के हाथ उठाओ। अच्छा, इंग्लिश नहीं जानते, सबसे मिलनसार, सबसे अपने को साथी बनाने वाले, निर्विघ्न तो बहुत हैंस बन सकते हैं। अभी हैंस के कमी है, बाप दादा सभी को कह रहे हैं, कुमारियों को, मददगार बनेगी ना, हाथ उठाओ जो मददगार बनेगी। लेकिन कौन सी मददगार? निर्विघ्न मददगार। अभी उठाओ, निर्विघ्न मददगार, निर्विघ्न। फिर इन एडवांस मुबारक को, मुबारक को, मुबारक।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। वैसे

is it?

coucher.

Nennung.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सेवा तो करी, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: नहीं है तो अपने को वरदान के स्वरूप में स्थित करो, बार बार रिवाइज करो। बाप दादा तो दे देते हैं वरदान, लेकिन वरदान को कायम रखने के लिए बार बार रिवाइज करके स्वरूप नशे का अनुभव करो तो वो वरदान आपका अमर वरदान हो जाएगा, क्योंकि वरदान के विशेष आत्माएं भक्तों को भी वरदान मिलता है, लेकिन वो अल्प काल का एक जन्म के लिए। आपका संगम का वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहता है, इसलिए वरदान स्वरूप में लाते रहेंगे तो वरदान की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। बुद्धि में नहीं, श्रम स्वरूप में लाओ। उस नशे में रहो,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चे क्या करते कोई कोई सब।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: छोटी बातें

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी देवर गति का समय, देवर पुरुषार्थ का समय, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। कमाते भी तो कि नहीं, अभी मिनट की बात भी कही दूसरों के लिए, कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, सेकंड, तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। समझा
2: सकता।
1: पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ? पास विद आनंद।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए। ये मैं बन धोखा दे देता। सोचो वाले, कहो वाले, लेकिन निमित और निर्माण बाउस
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी नाराज नहीं होना, ना अपने ऊपर, ना कोई आत्मा के ऊपर। खुश रहना, ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाके खुशी का एक मास खजाना जमा रहेगा, फिर धीरे धीरे खत्म तो नहीं होगा ना। खत्म होगा क्या? होगा सदा साथ रहना। बाप क्यों दे दिया ना, दे दिया है, अच्छा दिल भी दे दिए, दिल बाप को दिए। अगर दिल दे दिए तो आपके पास दिल आपके लिए नहीं, जैसे डायरेक्शन दे वैसे। तो बताओ, जिसने दिल दिल आराम को दे दी, वो कभी किसी भी आत्माओं से दिल लगाएगा? लगाएगा नहीं लगाएगा। तो दिल लगी कि दिल नहीं लगाना, बाप की अमानत। दिल आराम को दिल दे दी, दिल लगी की कहानियां बहुत आती है। तो कुमार याद रखना, ऐसे तो प्रवृत्ति वाले।

0: किसकी दृष्टि पड़ती कमजोर हो तो कमजोर दिल को यहां से मजबूत करके जाना। इसमें आज ही है कि वाकई के सरकमस्टेंसेस ऐसे थे कुछ भी हो जाए जब बाप दादा से वचन कर लिया कितने भी मुश्किल आवे लेकिन फिर को नहीं छोड़ना। बाप के आगे वचन करना वचन लेना इस बात को भी याद रखना। कोई आत्मा के आगे वचन नहीं कर रहे परमात्मा के आगे वचन दे कभी भी मिटाना नहीं। जन्म का व्रत किया कभी भी बोलना नहीं। अभी सभी मिनट के लिए अपने दिल से वैसे दिल तो आपकी नहीं है बाप को दे दिए फिर भी दिल में एक मिनट वचन करो विनाशक आज्ञाकारी रहेगी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Jasmin y Madena. Hare teacher se baap ye chahta hai ki hare ek ke future se future dikhai de. Nimit teachers ko baap dada ke छोटे बच्चों को बोर्डिंग में यही सिखा दी खुश दिमाग और खुश किस्मत हर एक का चेहरा ऐसे हो अच्छी की उसका सर्टिफिकेट तो है लेकिन अभी अपने चेहरे और चलन से चलन और चेहरे से मान जाए कि इन्हों को कुछ विशेष प्राप्त.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप लोगों को पता है, पहले पहले जब बच्चे सेवा में गई तो ब्रह्मा कुमारियों को सफेद साड़ियां देख करके वो दरवाजा बंद कर देते, सही दरवाजा बंद कर देते थे। सफेद साड़ी ग्रस्तों को अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए बच्चों ने सेवा कैसे शुरू की, उनके पोस्ट बॉक्स में डाला दी थी, क्योंकि पोस्ट
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: dead butcher.
1: बच्चों को देख खुश होते हैं।

0: Atlético, que afará con Deme Ortega. Lequen. Fará que tenao yete.
1: Change me. आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

of a man.

suite.

Jongkok.

Водоче. Bye.

नहीं कर

0: Papi. कब नहीं होती।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड कर
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी पूछते हैं आगे क्या करना है, बाप दादा का संकल्प है कि अभी ज्यादा में ज्यादा बने बनाई स्टेज पर चांस लो और उनको सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। दूसरों का भाग्य बनाओ, भाग्य बनाने का चांस दो उनको। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं आज कौन सी दो, एक तो रहम दिल बहुत बनो, किम्या के बाप के साथी बनो, शक्तिशाली से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं ऑफर करे, ऐसे ऑफर चारों ओर आवे, हर जोन में ऑफर आवे, ये सुतई प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी उनों का भी सहयोगी सनई बनने का चांस दो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सनई सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति है, लेकिन उनको सेवा के साथी बनाओ, उनको भी उमंग उत्साह के पंख दो, है चारों ओर, क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी सहयोगी नजर में है, लेकिन चांस नहीं दिया है, प्रैक्टिकल चांस नहीं लिए, तो ये वर्ष तो वो भी आपको लेना देंगे कि आपको तो आपने बताया ही नहीं कैसा भी कर सकती है। इसलिए आप चांस देने वाले बनो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय से अचानक की वार्निंग

0: Sexualmann. Dede. Harmatia. Dred sangalam dari. Vishesh atma banu. Sangalam kiya. इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। कहते हैं दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता माना ही सफलता। अगर सफलता नहीं है तो दृढ़ता नहीं कहेंगे। तो अभी दृढ़ता भव विशेष स्वमान रोज अमृत वेले स्मृति में लाना और उस विधि पूर्वक आगे बढ़ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट

Shabuk.

saat

O sea,

0: आत्मा के भी कल्याण के व्रत। शुभ भावना, शुभ कामना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विश्व की तो बात

0: परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार बैठे है ना, कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास, क्योंकि साकार में तो दादियां है, बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। संकल्प पहुंचता है, मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए, मैं क्या कम हूं, मेरा नाम क्यों नहीं। तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन,
1: जो पहले सुन

summer.

Ciao.

जीवन मुक्त, ब्रह्मांड जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्रह्मांड श्रेष्ठ जीवन।

Escúchate. Que coi carne y botella, carne y carne. Shut up.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सबके दिल में कौन क्या कहेंगे, मेरा बाबा

के पापा मेरे पापा, हर एक बच्चे के मन से देखो तू कौन समाया हुआ है दिल में। मेरा बाबा हर एक के

Yo qué.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने पहले भी कहा है, हर एक बच्चे के जेब में सहयोग के नोट होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प क्यों कमजोर हो जाती है जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है, बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा है, और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है। लेकिन क्या है? लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आते हैं कि नहीं आते है? लेकिन मानो बीच बीच में लेकिन आ जाते है, आ जाते है, ना नहीं करते है तो हाँ है। बाप दादा ने एक बात नोट की है, मेजॉरिटी प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है, सोचो वो एक शब्द क्या है? एक शब्द क्या है? बोलो टीचर्स, क्या है? पांडव बोलो, क्या है? एक शब्द है, आ गया, याद तो आ गया ना? याद आ गया। अच्छा, एक शब्द है मैं अपमान के रूप में भी मैं आता है, और कमजोर करने में भी मैं आता है। जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वो ही राइट है, वो ही होना चाहिए। और जब होता नहीं है, ये अपमान, अपमान का मैं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए, स्वमान भी याद दिलाते हैं, और मैं दे अपमान में भी लाता, मैं दिल शिकस्त भी करता है, और मैं दिल खुश भी करता है। मन की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अपमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वो अपमान अपना सहन नहीं कर सकेगा। अपमान अपमान सहन नहीं करे। शराबी कोई कहेगा ना, ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। ये अपमान की निशानी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत बहुत प्यार, ऐसे नहीं समझे कि हमारे से
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

아찔했다.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Shut up.

0: பீச்சனம் தின்மனதே
1: समझते हैं।

0: पवित्र प्रवृत्ति बनाई है तो क्या हो जाएगा? जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वो क्यों आपको दिखाई देंगी? क्यों कि क्रोध पर क्या दिखाई देता है? जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं। पर्तक्यता चाहते हो तो ये पर्तक्य प्रमाण है, इससे सभी आकर्षित होके सुते आएंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

死。

0: इंटेंशन से रहेंगे नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा संबंध द्वारा चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कर्पणा अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। एक ही समय तीन सेवा, तो अभी अटेंशन प्लीज।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

嫁妆烦恼，जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणें अपना कार्य साता भी है, पानी सुखाता भी, दिन से

Jesse.

essa é a van.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बात आवे, दीपक जगे हुए दीपक के सामने

Sabi, समय आएगा जो आपके सामने आने से आपका दिव्य स्वरूप देखने में आवे, साकार साधारण स्वरूप गायब हो जाए। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बाप दादा को जैसा समय उस रूप में देते, ऐसे आप सभी भी ऐसे दिखाई

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: लेकिन अब भी सभी बच्चों को

But

Jadka.

अमृत लेके अमृत वेले से लेके

सेवा में भी।

0: Radwelle. On si kila de bachon ko. Jo falo karne wale ono ko vishesh. Yaad pyar de de. Va bache va.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी अभी आज के दिन थ्रेट चेक करो, मैं कौन, मैं फ्रिस्ता, यही सभी चेहरा और चलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन बोलो, फिर से याद करना मैं कौन, मैं फरिश्ता। तो फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही, सभी को पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम युग के समय का खजाना, जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वो सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते, क्योंकि संगम युग का समय बहुत है छोटा, लेकिन समय से प्राप्तियां ज्यादा, सबसे ज्यादा संगम युग के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान पाप रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होता मिला है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति और गारंटी है। 21 जन्म फुल आते नहीं, बोना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी। तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वो है संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान। इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे। कई बच्चे समझते हैं कि एक दो मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो दो मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार दो मिनट नहीं, दो मास भी नहीं, दो वर्ष के समान शक्तियों की, सर्व गुणों की
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती, अनुभव स्वरूप बनने का नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार
2: सकते हो तो जो भी सब

Jaitan.

0: भी स्वभाव परिवर्तन की योग में भी अचल रहने की योगी जीवन की अनुभूति करने की जहां मेहनत है या कभी कभी कहते हो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या? जिस भी समय आपको अनुभव होगा कि जब अनुभव के सीट पर सेट होते हो किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी पर अनुभव करते हो तो उस समय मेहनत करनी होती है। नेचुरल अनुभूति होती है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: भोजपुरी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है। सौगात दे दी देनी, ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात। सीट पर रहना मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नहीं। स्वमान है ना ये, स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो भी निमित्त बने हुए हैं उन्हों को आजकल के वायुमंडल पर स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं। आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं। कुछ सिक्या, कुछ किमिया, कुछ रैम, कुछ आत्मक सने उसकी आवश्यकता है। वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता, बैलेंस से हिम्मत भी सिर्फ सिक्या से अभी सभी सिक्यक बन गए हैं, इसलिए सिक्या के साथ हिम्मत दिल का सने दोनों का बैलेंस रख करके देना। और ऐसे प्लान बनाओ जो चारों ओर कोई ना कोई ऐसा प्लान चलता रहे, जैसे समय पर समय पट्टियां चलाते हैं ना, वो तो चलाते ही हूँ, लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसे विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बन। चाहे ना है लेकिन हिम्मत कम है, तो आपस में मिलके कोई ना कोई अरमास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए उसमें, रिजल्ट आती रहे। और चीकिंग भी हो अगर नहीं करते हैं तो क्यों, अलबेलापन है तो उनके ऊपर सने से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समय पारा तो ऐसा कोई प्लान बनो, कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के सबको बिजी रखो उसमें। ठीक है,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो बाप दादा, एक पास की रिजल्ट देखने जाए थे, सिर्फ एक सुन रही है।

Kurz so.

Sabbath.

Shit.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ और।

हिम्मत रखी। आता ऐसा मिला और यज्ञ रचा, यज्ञ के ब्रह्मा

0: दृढ़ संकल्प के कारण, तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता? ये तो एग्जाम्पल है आपके आगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जाओ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: शिवा जो स्वयं को वा दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, वो स्वार्थ है। जो ऊपर होती है निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ एकदम न्यारी और प्यारी बन करके स्वार्थ से न्यारी और सर्व के संबंध में प्यारी चारों और
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

bientôt.

Shit, dit wordt dan.

Ciao.

विश्वसेवको सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में सेवा भी

пить.

Sun.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कर सकते हो तो करो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई अर्जा नहीं। सफल करो खजानों को। सुनाया ना, मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना और बुद्धि से समय का खजाना, समन संपर्क से खुशी का खजाना। सफल करो तो सफल करने से सफलता मूर्त बनी जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती, सीढ़ी का नहीं। समस्या आई मिटाया, कभी दो दिन लगाया, कभी दो घंटा लगाया, ये सीढ़ी चढ़ना है। दुआएं सफल करो, सफलता मूर्त बनो तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाएंगे जहां जाओ, चाहे सुखी वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज में पहुंचो। सेकंड में लंदन में प्रोग्राम किया था ना, 1 मिनट का, बाप दादा तो कहते 1 सेकंड। 1 सेकंड में लिफ्ट में चढ़ जाओ, सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही शरण दे रहे हैं कि समय के समीप विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अपमान में आते हैं तो ये भी व्यर्थ संकल्प और मेरे पद के अशुभ संकल्प
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

छोटी छोटी बात में।

खुशी से कर

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे महात्माओं को

mi podcast.

Who's so

Ha ha ha!

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, ये होमवर्क देते चेता, कि ये तो मास एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय के बचत का अपने प्रत विधि बनावे। इन दो मास में हर एक अपना चार्ट रखे, व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए

0: मटर के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी, कहा हुआ भी है मन जीत जगत जीत। तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं, करेंगे, वो हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देंगे। अपने रिजल्ट आप देखना, मन खुश तो मन की खुशी बांटेंगे। ये पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का टेंशन रखो। व्यर्थ समाप्त, संकल्प समय दोनों समाप्त, और समर्थ संकल्प समृत समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेंगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।